कल कल कल कल कल छल छल बहेरे निर्मल धारा कल कल कल कल कल कल छल छल बहेरे निर्मल धारा।

कल कल कल कल कल कल चल चल बहेरे निर्मल धारा कल कल कल कल कल कल चल चल बहेरे निर्मल धारा।

ऐसा है किस्मत है जो खुदा का कभी दीदार हो जाए तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए।

हम उस प्राण रक्षक, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा के तेजस्वी, श्रेष्ठ, अज्ञान नाशक, दिव्य स्वरूप को धारण करें, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित